0: वर्ष वह करके अर्थात समुद्र की मत कह हो काट बनास्पति सगरी लिख गए हो के लेखन खाज बने हो सार सुता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपाण ना बिनती ना तो तुमको सब नय कर बेसुमार भे अंत स्वामी तेरो अंत न
1: कूट फराद हमारे संतो
0: कूट फराद हमारे संतो
1: अनख विधि समझाओ
0: अनख विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आ

समाधि लगा के बैठी। अमृत वेला है, सारी कुदरत विस्माजता है, आकाश से तारे चमक रहे हैं, तारियां दी लो विच कोई प्यार वाला प्रेमी अपने मन के अंदर प्यार दा दीप जला के प्यारे नाल जुड़े है। इस तरह नदी दा पानी अपने प्रीतम नू मिलन वास्ते तुरिया जांदा है। इस दे अंदर आस है मिलाप दी। इसे तरह जीवन आशावादी है, जीवे आशा नरे निरा। साईं दे प्यार विच ए भी किसे अगम्मी आस विच बैठा है।

तू लगा रख, ये गुरु कर दी सेवा मिली है ता तो करी। गंगा राम नाले झूठे भांडे मांजदा रहिंदा है ते नाले पढ़दा रहिंदा।

बख्शिश ले लेगा। पर मनन भी कोई करेगा जो मन करके करेगा, मनन कोई करेगा जो पिता दे हुक्म नु सुन के समझ के कमाएगा। सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखण वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। अकवाई फिर बेनती करदे हां, सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखण वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। अकवाई जे एक पत्नी पति दा हुक्म मनेगी, मनन करेगी मन करके, ते अपने पति दे प्यार दा सुख ले लेगी। लेकिन अवस्था वही है जे अगर पत्नी अपने पति दे हुक्म नु सुनेगी, समझेगी, सिखेगी, मनेगी। जे सिख गुरु दे हुक्म नु मनदा है, मनन करदा मन करके, ते सिख गुरु दा प्यार ले लेगा, गुरु सिख दे अंदर वासा कर लेगा, वो गुरसिख होएगा। पर गुरसिख भी गुरु दे हुक्म नु, गुरु दे शब्द नु सुने समझण लई, बाणी दा पाठ करे समझण लई, बाणी सुने समझण लई, समझण लई समझे इस करके सिखण लई, सिखे इस करके मनण लई। आखो वाहिगुरु, सिर्फ पाठ ही ना करे लेकिन पाठ करे समझण लई, समझे इस करके सीखण लई, सीखे इस करके मनण लई। मैं पाठ कर लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की? आखो वाहिगुरु। मैं गुरु का हुक्मनामा सुन लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की?

कि बख्शिश भी नहीं। सच है पर मनण का संबंध मन नाल है। जिन्होंने मन करके मनिया, जिन्होंने अंदर मन विच प्रेम सी मनण लई, उन्होंने सुनिया भी मनिया भी, पर एक जुगत नाल मन कीता पाओ। आप वाहिगुरु सुनिया मनिया मन कीता पाओ, तुसी सुनिया। जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ही नहीं, भोग पै जाएगा। आप वाहिगुरु मनोगे की? जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ते मन विच प्रेम रख के मन लिया, फिर तो अंतर्गत होता जाएगा। आखो वाहिगुरु मैल खत्म हो जाएगी, निर्मल हो जावांगा। आखो वाहिगुरु गल मनन दी, अज असीं दुखी क्यों हां? सुखदाते दी गल मनदे ही नहीं। आखो वाहिगुरु अज साडे भटकना क्यों है? सुखदाते गुर परमेश्वर की गल वल तो सुनते ही नहीं, सुनते समझते नहीं, समझते मनते नहीं। आखो वाहिगुरु जिहड़ा पाठ कर रहे हैं ना, एक मैं बेनती करा, मैं दुखी हां, रोगी हां, मैं डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर ने मेरी नबज फड़ ली, डॉक्टर ने नबज फड़ के मैनू मेरी बीमारी दस दी, एक पर्ची ते मैंने दवाइयां लिख दित्तियां, दवाई खाण का ढंग दसता सवेरे दुपहरे शामी, नाल दस दी विधि। तुसी दसो कि मैं पर्ची नू हाथ विच फड़ के पाठ ही करी जावां कि मैं डॉक्टर की पर्ची का सारा दिन पाठ करता जावा, ते दवाई सवेरे खा दुपहरे का शामी का, सवेरे खा दुपहरे का शामी का, लेकिन ना मैं दवाइयां लियावां ते ना मैं खावां। कि मैं उस पर्ची की आरती उतारी जावां, कि मैं उस पर्ची की जोता जगाई जावां, मैं ठीक हो जावांगा? आखो वाहिगुरु समझ की गल ऐसी कि मैं डॉक्टर की गल जिन्हें मैं नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, किसे को समझा, डॉक्टर को समझा या किसे को समझा, फिर देखा मैं दवाई सवेरे शामी किवें खानी, विधि किवें है, परहेज की है। ठीक है मैं डॉक्टर नाल प्यार करांगा, मैं डॉक्टर का सत्कार करांगा, जिसने मेरी बीमारी लभी मेरे मन भी डॉक्टर का सत्कार होएगा, डॉक्टर की याद होएगी, डॉक्टर नाल प्यार होएगा जिसने मेरी बीमारी लभी। लेकिन डॉक्टर भी मेरे से तां प्रसन्न होएगा जेड़ी मैं दवाई लिखी है ये मरीज खांदा भी है कि नहीं। आखो वाहिगुरु अज साडे अंदर भटकना, असी खिजदे हां, खपदे हां, खिजदे हां, अपने आप नूं धर्मी कहलाउण वाला भी खिजी जांदा, हाथ विच गुटका फड के पाठ करदा फिर भी कल्पी ते खिज जांदा, क्यों? मेरे गुरु वैद ने, मेरे गुरु परमेश्वर ने इस मनुखता दी जमीर उची करन वास्ते, इस दी तकदीर उची करन वास्ते, इस कराए पे होए नूं राहे पाउण वास्ते, किरत कर्म के विछड़े नूं मुड़ के मिलाउण वास्ते, इस दा सच्चा ते सुच्चा आचरण करन लई, इस दे विच नेकी दे गुण भरन वास्ते, परपकारी मुजस्मा बनाउण वास्ते, सरबत दे भले लई इस दे अंदर सोच भरन वास्ते, मेरे गुरु परमेश्वर पूरे वैद ने डायग्नोज किया, इसकी बीमारी दसी ते नाल तुरदरगाही बाणी दे दिती। आखो वाहिगुरु तुरदरगाही बाणी, इस बाणी नू सुनी, इस बाणी नू पढ़ी, लेकिन समझण वास्ते समझी, इस करके सीखण वास्ते सीखी, इस करके मनण वास्ते, जे परमेश्वर दी बाणी ए जड़ी औखट है तेरी जमीर नू उच्चा करन वास्ते, सच्चा ते सुच्चा आचरण बनाउण लई, तेरे विछड़े होए नू मुड़ के प्रभु मिलाउण लई, तेरा किरदार उच्चा करन वास्ते, तेरा आचार उच्चा करन वास्ते, जे अगर तू परमेश्वर दी बाणी नू सुने, इस लई समझण लई समझे, इस लई सिखण लई सिखे, इस लई के मनण लई, जे तू गुरबाणी दी विचार नू छकदा जाएगा, दुखां दा नाश हो जाएगा। आखो वाहिगुरु सुखां दा

लेकिन सवाल यह है, जे अगर हुक्मी दे हुक्म मनण दा संबंध है, ते मनण दा संबंध फिर मन नाल है।

0: आवाज जिसका संबंध शब्द नाल है, शब्द मन का तत् है, आकाश शब्द का विषय है, नक सूंघता है जिसका संबंध गंध नाल है, गंध मन का तत् है, धरती गंध का विषय है, स्पर्श का काम छूना छूना का संबंध स्पर्श नाल है, स्पर्श मन का तत् है, पर हवा स्पर्श का विषय है। हुण इस तरह समझ आती है मेरे गुरु ने कृपा करके बख्शिश की थी। कैसी बख्शिश? एक गल मैं स्पष्ट कह दिया, मैं अपने मन को खुद समझाना होवे मैं अपने मन नाल नहीं समझा सकता। बेशक शरीर मेरे अंदर मेरा मन टिकया होया, मैं अपने मन नाल अपने मन नू नहीं वेख सकता। कारण की है, मेरे मन का स्वभाव भी वही है। जिस मन नाल मैं वेखना चाहना उसका स्वभाव भी वही है। जिस मन नू मैं समझना चाहना उसका स्वभाव भी वही है। जिस मन नाल मैं समझाना चाहना उसका स्वभाव भी वही है। मैं अपनी अखां नाल अपनी अखां नू नहीं वेख सकता। मेरी अखां विच पिया होया सुरमा अखां खुद नहीं वेख सकदियां। मैनू अपनी अखां नू वेखण वास्ते शीशे की लोड़ है। मेरी अखां विच पे हुए सुरमे नू वेखण वास्ते अखां नू शीशे की लोड़ है। जे मैं अखां वेखणियां ने शीशे की लोड़ है। मेरिया अखां बिना शीशे तो अपनी अखां नू वेख नहीं सकदियां। मेरिया अखां बिना शीशे तो अखां विच पए हुए सुरमे नू नहीं वेख सकदियां। ते सच ए है कि मेरा मन अपने मन नू नहीं समझ सकदा, मेरा मन मेरे मन नू नहीं वेख सकदा। इस करके मैनू अपने मन नू वेखण लई गुरु दे मन दी लोड़ है। गुरु दा मन है, गुरु दा शब्द अख वाहिगुरु, गुरु दी आत्मा है, गुरु दा शब्द। मैनू अपने मन नू वेखण लई गुरु दे शब्द दी लोड़ है। इस करके मेरे मन नू समझाउण लई मैनू गुरु ने गुरु दा शब्द दिता है, सच्चे दा सच्चा शब्द दिता है। क्योंकि मन दा एक तत् है शब्द। मेरे गुरु ने मेरे ते अपार कृपा कीती, मेरे मन नू सच्चे दा सच्चा शब्द दे दिता। जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नू मिल गया, जदों मन दे अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, सच्चे दे सच्चे शब्द नाल मन रंगिया गया, जदों मन विच सच वस गया, दूसरे तत् भी बदल गए। आखो वाहिगुरु, मेरी देखनी भी बदल गई। पहला तां मेरी देखनी विकारां वल सी, जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नू मिल गया, हुण निरंकार नू वेखण लग पई। विकारां नू वेखण लई दुख सी, निरंकार नू वेखण लई सुख है। जदों अखां विकार वेखदियां सी ते दुख सी, जदों ओही नेत्र निरंकार नू वेखण लग पे ते सुख। पते पते चों, जलां चों, थलां चों, महीजल चों, जदों मन के अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, मेरा सुनना भी बदल गया। कच नहीं सुनदा हुण सच सुनदा। आखो वाहिगुरु, कच सुनन विच दुख सी, निंदिया सुनन विच दुख सी, चुगली सुनन विच दुख सी, हुण सच्चे दे सच्चा शब्द सुनन विच सुख है। जिस सुनी मन तन हरिया होआ। आखो वाहिगुरु, सुख है। हुण सुनो सत बाणी वाला बन गया। आखो वाहिगुरु, पहलां तां बोलदा सी कूड़, दुख सी, कूड़ बोलण विच दुख सी, झूठ बोलण विच दुख सी, कबोल बोलण विच दुख सी। हुण तां सच्चे दा सच्चा शब्द बोलण लग पिया। पहलां तरह तरह दे जीव दे चसके दुख देंदे सी, रोग पैदा करदे सी, बहुत साधों दुख प्राप्त होवै। हुण तां सच्चे दा सच्चा रस पीण लग पिया। रसना राम रसायण माती, हुण तां सुंघना ही बदल गया। हर चरण कमल मकरंद लोभत वाला बन गया। ਹੁਣ ਪਰਸਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ।
1: ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
0: ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਠੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮੇਵੇ ਖਾ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਰਸਾਂ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਛੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੀ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਛੱਕ ਲਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਘੁੜ ਤੱਕ ਛੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਨ ਤੱਕ ਹੀ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤਨ ਤੱਕ ਹੀ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਨ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

सुख नानक संतन की सेवा चरण संत कोई पीवना बाग हुआ गुरु संत मिलाया प्रभ बनाशी कर में पाया गुरु संत मिलाया अखवाई गुरु संत दे शब्द रूपी विचार उन्हां विचारां दा अनुभवी रस ऐसा सुख दिंदा है जिहड़ा फिर कदे मरदा नहीं। गुरु संत दा ही अनुभव गुरु संत दी सिख्या गुरु संत दे शब्द दी कमाई ऐसा प्रकाश करदी है फिर समझ आ जाती है ए मन लीन पे सुख देओ अखवाई। भगत कबीर ते गुरु प्रसाद वरत्या इस गुरु प्रसाद दी कृपा द्वारा गुरु संत दी कृपा द्वारा उन्हां दा ए अनुभव हो गया जियो एक अर सगल शरीर। इसे अनुभव विच बोले इस मन को रब रहै कबीर सचमुच गुरु का मन ही साढ़े मन नूं समझा सकदा है। गुरु का मन गुरु का शब्द हुंदा है गुरु की आत्मा गुरु का शब्द है फिर समझ लेना गुरु का दर्शन भी गुरु के शब्द का दर्शन है गुरु का संग भी गुरु शब्द का संग है गुरु का वचन गुरु शब्द है गुरु की मत गुरु शब्द है गुरु शरीर नहीं शरीर राही प्रकाश करता है। शरीर का जन्म भी लेंदा है ते मर जाता है लेकिन गुरु सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ऐसे गुरु अविनाशी दी शरण गुरु अविनाशी दी याद गुरु अविनाशी दी सिख्या ही सानू सदा सदीवी कहम रहण वाले सुख नाल जोड़ सकती है। आओ गुरु शब्द का आसरा लेंदे हुए अपना मार्ग गुरु शब्द नूं बनाते हुए जीवन का मनोरथ गुरु शब्द राही पूरा करन लई गुरु ते लड़ लगी अपना मन गुरु दे हवाले करके बाकी जिंदगी गुरु दे मन नाल जीना सिख लईए। जिन्होंने गुरु दे मन नाल जी लिया उन्हां सिखां ने अपने गुरु नूं रजा लिया अखवाई। जिन्हां ते गुरु रीझ पिया उन्हां नूं सिख पा गया जिन्हां नूं सिख पा गया गुरु ने उन्हां विच ही वासा कर लिया अखवाई। गुरु चेला चेला गुरु पाया अखवाई। सारे बोलोगे गुरु चेला चेला गुरु पाया। इत्थे मैं गल होर स्पष्ट कर दिया सतगुरु नानक देव जी ने भाई लहणे नूं मत्था नहीं सी टेकिया धन गुरु अंगद देव जी नूं टेकिया सी कदों जदों उन्हां दे अंदर शब्द का प्रकाश हो गया शब्द नाल शब्द का प्रकाश हो गया। इस दा भाव गुरु नानक ने किसी शरीर नूं मत्था नहीं टेकिया गुरु शब्द नूं मत्था टेकिया अखोवा। इस दा भाव गुरु नानक ने किसी शरीर नूं मत्था नहीं टेकिया गुरु शब्द नूं मत्था टेकिया अखोवा। बस इतनी गल समझ लेना गुरु शब्द नूं मत्था टेकिया मेरे गुरु ने
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

थोड़ी नजर करे जय पंडित नदरी सतगुरु पाया तेजियो बुद्ध जन्म परमया सतगुरु सत सुनाया सतगुरु देवता तक उन्हें सत सुना लोग सुबह।